0: और गंगरू सेठ कैसा चल रहा था?
1: क्या था ये? नहीं, ये क्या किया क्या तुमने अभी है मेरे साथ? मैं क्या टीवी हूँ तुम्हारा, एंटरटेन का सामान हूँ? ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होने वाली, मैं समझे तुम? और ये क्या है ये? मैं इसे यहाँ पे काम करने के लिए हूँ और तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देखते रहते हो, खाते रहते हो?